0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: வணக்கம் நேர்களே, இன்றைய கிசான்வாணி நேரலை நிகழ்ச்சியில ஆடிப்பட்டம் தேடி விதை அப்படின்ட்டு, ஆடிப்பட்டத்துல என்னென்னலாம் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் விதைக்கலாம், என்னென்னலாம் சாகுபடி செய்யலாம், இந்த மாதிரிலாம் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதை பத்தி யார் சொல்ல போறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, திருவாரூர் மாவட்ட தோட்டக்கலைத்துறை முன்னாள் துணை இயக்குனர் டாக்டர் எஸ் நீதிமாணிக்கம் அவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு பல விளக்கங்களை நமக்கு தர இருக்கிறாங்க. நீங்களும் உங்களோட சந்தேகங்களோட அழைங்க. 0-4-3-6-8 அப்படிங்கிற முன் இணைப்பு என்னோட, 2-3-1-2-3-1 அல்லது 2-9-9-4-8-0